0: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: কাহিনী পঢ়ি আপুনি নিশ্চয় ভাল পায়, উপন্যাস বা গল্পৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিশ্চয় আগ্ৰহ আছে। বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটীয়ে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে উপন্যাস পাঠৰ এটি মনোৰম অনুষ্ঠান। প্ৰতি পুৱা 9 বজাত এতিয়াৰ পৰা শুনিবলৈ পাব ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠৰ অনুষ্ঠান। ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠ বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটীত প্ৰতি

0: govi.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
2: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
3: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
4: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
5: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
6: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के

0: 31वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया।

0: है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
1: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडब्ल्यू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट ए एफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड वीवाटेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों, पीएम मोदी टू

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: আজিৰ গীতিমালিকাৰ শেষত শুনোৱা হওক নিত্য দত্তৰ কথাৰে দীপালী বৰাৰ কণ্ঠৰ গীত, প্ৰযোজনা প্ৰসেনজিৎ ফাংচুৰ।

0: आईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
0: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोड़ जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
0: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय।

0: कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र के रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है, तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है, लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम। तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी।

0: ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनत के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चले जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास

0: बताओ क्या है?
1: तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
3: मैं भटक कर तुम्हें आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेज

0: दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
0: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो?
1: हा?
0: मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुरक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरे कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग

0: के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी मां है, पर मां क्या है? इस बहार के सामने तेरी मां क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो।
0: हाँ।
1: रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भाई मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।

0: माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
1: क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़े देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

परात्माना। आज के इस परागमाला लाइव कार्यक्रम में मैं ब्रजमोहन प्रसाद आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस है। पिकनिक का नाम सुनते ही हमारे मन में तरंगे दौड़ जाती हैं। मन में एक नया उत्साह, नया उमंग हिलोरे लेने लगता है। गुनगुनाती धूप, पेड़ों की ठंडी छांव, अपनों का साथ और घर का बना स्वादिष्ट खाना। जी हाँ, समझ गए ना, आज 18 जून है, यानी इंटरनेशनल पिकनिक डे। भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा वक्त चुराकर प्रकृति के करीब जाने और खुशियां बांटने का दिन। तो क्यों ना आज हम सुरों के सफर से एक खूबसूरत पिकनिक बना दें। चलिए यादों की टोकरी खोलते हैं और सफर की शुरुआत करते हैं इस सदाबहार और मस्ती भरे तराने के साथ।

0: आपका स्वास्थ्य विशेषज्ञ देखभाल और संवेदनशील सेवा का हकदार है। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत होम्योपैथिक परामर्श एवं समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। कुछ विशेष रोग स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं मार्गदर्शन भी उपलब्ध है। चयनित रोगों से पीड़ित पात्र मरीजों को निःशुल्क दवाइयां एवं प्रयोगशाला जांच सेवाओं का लाभ भी मिल सकता है। सरकारी संस्थान में विश्वसनीय और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाइए।
1: RRIH बेटापारा गुवाहाटी।
0: यह संदेश जनहित में जारी।
2: परागमाला लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिकनिक का असली मजा तो तभी है जब सफर में अंताक्षरी हो, ठहाके हो और ऐसे खूबसूरत नगमे हो। वैसे पिकनिक सिर्फ एक आउटिंग नहीं है, यह दिल को तरोताजा करने का एक बहाना है। असम की खूबसूरत नदी के किनारे हो या देश का कोई भी शांत कोना, प्रकृति हमेशा सुकून देती है।

0: अपने स्वास्थ्य के लिए उठाए सही कदम। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथिक परामर्श, रोगी केंद्रित देखभाल तथा कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विशेष परामर्श सेवाएं उपलब्ध है। चयनित मरीज प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क दवाई एवं प्रयोगशाला जाँच सेवाएं। आइए और एक विश्वसनीय सरकारी संस्थान में किफायती और सहयोगात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव करें।
1: RRIH भेटापारा गुवाहाटी।
0: यह संदेश जनहित में जारी।
2: परागमला लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ ऑफिस की डेडलाइंस, स्कूल के होमवर्क या फोन के स्क्रीन तक सीमित नहीं है। असल जिंदगी तो उन पलों में है जो हम अपनों के साथ खुले आसमान के नीचे बिताते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि कुदरत के करीब जाना हमारे मानसिक सुकून के लिए कितना जरूरी है। पिकनिक डे का मकसद ही यही है। चार दीवारी से बाहर निकलिए, ताजी हवा में सांस लीजिए और डिजिटल दुनिया से थोड़ा डिटॉक्स हो जाइए। नो ईमेल्स, नो रील्स, सिर्फ और सिर्फ रियल बातें।

श्रोताओं, आज खुद के साथ अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को वो पुराने दिन फिर से जीने का मौका दीजिए। मेरी तो यही सलाह है कि आज का दिन खुद को और अपने परिवार को गिफ्ट कीजिए, यादें बनाइए, क्योंकि ये यादें ही जिंदगी का असली सरमाया है।

0: इस गीत के साथ ही परागमाला लाइव कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है और मैं ब्रजमोहन प्रसाद आपसे लेता हूं विदा।
1: परागमाला परागमाला
2: परागमाला लाइव शुनिले আগবঢ়ালে ব্ৰজমোহন প্ৰসাদে।
3: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আমাৰ যুৱবাণী।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বহামবাহু। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনা হ'ব আৰু 12:05 আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। শ্ৰোতাসকলে শুনি আছে হিন্দী চিনেমাৰ গীতৰ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত এইবাৰ এয়া মহেন্দ্ৰ কাপুৰ, জব য়াদ কিছি কি আতি হে চিনেমাখনৰ এই গীতটি লিখিছে ৰাজা মেহদী আলী খানে।

0: পিছত ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का यह सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में

0: उग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए

0: ये मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ruta do kogi la si script bintang te a film la marjan punoi lamkan punoi la drama punoi mi bintang te a tike la henlo na si script a importance ke la henlo la si script si pachini po na liko na si karjap na ima kosona mahang si paklang na ima kang nek ma ningi oi ma mata ningi jang je ma la hai ang ton script long si dolap ji la si film noi drama noi script ki me a putak si depend ji non si script me me puja la bangke jong he acting me samme pami ang ton pen pami sen ki uni dai athima acting buke invert pen acting ara yi buke kachalon li dai atomo public dami bolde bahini bange thom actor doi lasila bange thom pan samme inut bang ko pc klam nahi ma la sor inut bang ko pc ki correspond nahi ma la bang pachini vek nahi la lasila so pachini dar aphian si kopia drama ma sitame plank tiri choklimi lalo
1: ante ajar hin stame kitok na yeta ang dengang hoidu lun bunon dakak stan jai si hini ki thom la pudo e ate ot ki pini la pudo la se script ki tok stame kupuson si ki tok pangcheng na ji nang li than pachini ma
0: lamar jan long noy mate lam kan long noy script ke important ke the nai lo la se main a role ki play po a difference ke la ancho lo kachi prek dam bangke isi bangke lamar jan bangke lage recorded ki chok chian stame itum puthot chipake ngun sidame lamkan mate drama long lo putela ke iphongwa ji life se paklangi lasi kachi prek dam mangela hen lo lasi drama sungmu wala mang dala lo po efi same to non il tumang script alam se chingwa lo pot ti than lo pot script ki pangcheng mangela ke scene wise sidami scene 1 scene 2 scene 3 bu scene 1 lo kopie to mo si doima scene 2 kopie to mo si doima ege laso scene long athak si ba ke cheng si ba ke scene 1 putok sidame hudak pachini dak nei koloso dimma koloso porma la si analo brode itum de puto konang po la der pen hudak adim konalo sitting room ma mate bedroom ma mate baranda ma la same pakla rondak nei la so phi bangke outdoor ma indoor ma la ta pachini nei athi ma la dak pachini da nei po bangke la so script puthak actor tum der kali la so script kila nei bangke hula अधिक टेक्निकल टीम तुम समय लाइट्स तुम समय साउंड तुम समय लाके लांग रही लामर जान लोग लो बोलते हैं हुला एडिटर मुका एडिट ही तुम तमे लांग रही लासी लास सीन वाइज को पीसी पकले मी मा को लसो डिम सी लसो एक्टिंग क्लेम मा लता पर क्लियरली तो कुंडक पो लसो पी बंग के एक्टर मैन दो पो लसो एक्टर बंग को सोन कैरेक्टर से के प्ले मा लता दो पो एंग को पी डायलॉग सी निजे मा पर एक्टर नंबर टू बंग को पीसी की थाक लोन पो लदा लासो के थाक चिपचिलित काजू पत के थाक लासो रमु पदोपो ला देतन सी नेक्स्ट सीन सीन टू दम बोला सो सीन टू सीन कचि लाडलो पोलोते लके अदिम लक कचि लाडलो लासी इसीवेर अलुम नो सी सीन हिनी दोई पो बंके लगे सीन पुगे पुदम नो दागी लासे आ सीन कचि लार सीन टू पुगे ला बंके आ कपरेक आ इसीवेर अलुम समय आ सबसो आ कपरेक आ नसी पोंडेट पो अठे इलोंग वेट कली दत पो ला सी स्क्रिप्ट लोंग मंगे हुला को पीसी की क्लेम नहीं मा आंकड़ों डिटेल्स आसो सा अलुर्ची लुर्चा अंदा पचनी लाप नहीं आ दुखों के लोला ला सी ला जों से आवे पुलोते इली निंगेरे पेन हुला दा कादिम ले रोक पेन एक्सप्लेन नंगा रेट पो थान नंगा रेट पो ला सी स्क्रिप्ट आ इंपोर्टेंस बांगे लाइन लो ला सी कितो के लांग पेन समय हुला कितो को एक बांग के चेंग पेन मा सी मथा लाप नहीं ला सो कैरेक्टर फन मांगे ला सोन हेन लो अलांगली कोसों सी की क्लेमी मा अलांगली कोसों सी कनिजे मा कोसों सी कंगनी मा कोसों सी कर्जा मा लहायन ता पचनी लाप
1: आ होगा होगा लम लो नंगली लपु अन अलम की थाना पोट नंगली फन सूरी सूरी अकडों फजिर इग्लो इंटे सहु तंगते पु प्रोड्यूसर इंटे मते गोतम इंटे फनली इथेलाम कर्ज कांतु ला पहिलो इली कंपनी गचे थान गेला दा कारबी लामकान पेन इली तुमाला मेट लाम चोंगलोंग कुपुआन आर डी लापेन कुपुसन से कचिरा माते कुपुआन के नंग सब पु आठेपी अपुठाक सब सो थान पचिनी जिमा
2: नीले जुंग जुंग पेन के माथा दम के लदाक कचिरा थे तान लापेन इसी लिटरेचर लोंग जितो अप्रांगे दम जी अपन के इसी ड्रामेटिक मंते इसी ड्रामा गया के नंग सब पुसी नीली होई पेन मंते नीली पर्सनली के माथा दम दो अथेमत इसी अतुमो जोक से तोकलो पुते लबांगसो अतुमोलोंग के पकलांग जे फन मनते विजुअली तमने मुनित फन के पलांग जे फन लबांगसो अतुमोलोंग जे से फॉर एग्जांपल इनोटा मुनित कचिरु कचिरु प डाके तोक समे कचिरु पुसे क्लांग जत प वफिट्स तमे ड्रामा पे जोंसी क्लांग लो पुते पकलांग लो पुते केलांग तुमा

खुलुमबाय बे आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दुलाराय खोनासंग्राफोरनिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं बानेश्वर बर'हा। दानिया दं आबुं रादाब माजुलीनि आउनियाहाटी सत्रनि सत्र बिगोमा एबा आउनियाहाटी मुलुग सोलोंसालिनि आचार्य डक्टर पीताम्बर देवगोस्वामीया मैया मोनायाव ब्रिटिश संसदाव आसामनि बैष्णवी हारिमु आरो बां हारिमु समाजाव बेनि गोहोम बिमुङै हाबाफारियाव गाहाय बिबुंसारगिरि महरै बिबुंसार लाखियो। ब्रिटिश एमपि बब ब्लेकमेननि हेफाजाबाव बानजायनाय बे हाबाफारियाव बैष्णवी हारिमु सत्र नामघरनि राहा आरो बां हारिमु समाज दानायाव बेनि गोहोमनि बागै गुवारै सावरायनाय जायो। डक्टर पीताम्बर देवगोस्वामीया 25 मिनिट सम लानानै होनाय बिबुंसाराव आसामनि बैष्णवी हारिमु सुबुंथिनि दर्शन आरो मुलुगनां बेसेनथिनि आयदायाव गोथौथि होयो। महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव आरो श्री श्री माधवदेवनि आदर्श सोद्रोमथि बिदा फंबाय सान्थौ सहायनाय आरो सुबुंथि दर्शननि सायाव सावरायो। आसामाव बैष्णवी सोमावसारनाया धोरोमारि सोमावसारनायल' नङा, बेयो समाज फोसाबनाय हारिमु खौसेथि आरो सुबुंथिनि मोनसे सोमावसारनाय होनना बिबुंसार लाखियो। आसाम सरकारा समाज थुनलाइ हारिमु आरो आरिमु फोथाराव बिहोमा होनायनि थाखाय मैया साब्रै गागि सुबुं बिथांमोननो बान्था फोसावदों। जिकिर आरो जारिनि गागि महरगिरि गलाघाटनि शामसुद्दीन आहमेदनो 2025 बोसोरनि आजान पीर हादरारि बान्था फोसावदों। सत्रिया महरगिरि मानिक बरबायन आरो आरिमु महरगिरि मधुसूदन दासनो हादरसा क्लाबनि 2026 बोसोरनि विष्णु राभा बान्था गथायदों। फैगौ 20 जुनाव गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र खुंनो गोनां विष्णु राभा दिवसाव बे बान्थाफोरखौ गथायनाय जागोन। समग्र शिक्षा आसामा हादरसानि 39,415 फरायसालिफोरनो 2026-2027 बोसोरनि थाखाय बोसोरारि अनसुंथायनि 10% थोन मुख्लायना होबाय।

समग्र शिक्षा मावफुं सामलायगिरी विपुल कुमार दासा मैया बे आयदायाव गासिबो जिल्लानि मिशन कोऑर्डिनेशनफोरनो लाइजाम दैथायहरो 25 जूननि मादाव बे धोनफोरखौ बाहायनो थाखाय फरायसालिफोरनो बिथोन होनाय जादों गोहोनि उथुमाय कामाख्या धामाव फैगौ 22 जूननिफ्राय जानो गोनां अम्बुबासी मेलानि थाखाय हादरसा सरकार आरो कामरूप नोगोरमा जिल्ला खुंथाया आबुं सांग्रांथि राहा आजावदों हादरसानि दावबायथाय बिफाननि मन्त्री अजन्ता नेउगा मैया अम्बुबासी मेलासिम फैनो गोनां सिबियारिफोरनि थाखाय जानाय थानाय राहानि बागै सुलाद दायो हमैबो 800,000 सिबियारि थुबुर जानायनि मिजिं दङ बे अम्बुबासी मेलायाव एनडीए सरकारनि 12 बोसोरनि सुबुं अनसाय आरो जौगालु मोखां बिथांखि आयदायाव रायजोफोरखौ सांग्रां खालामनायनि थाखाय 20 जूनसिम कार्बि आंलङावबो जनकल्याण बादा बानजायगोन जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबाव खुंनो गोनां बे बादायाव जिल्लानि गासिबो जौगाथाय खोन्दोआव मिरु आरो हादरसा सरकारनि अनसायगिरि बिथांखिफोरनि बागै रायजोफोरनो फोरमायगोन फैगौ 21 जूनाव हादरसायाव खुंनो गोनां मेडिकेल साइन्स कर्सआव मुं थिसननायनि आन्जाद नीट खुंनायनि साखाफारानि बागै मैया गिबि मन्त्री ड॰ हिमन्त बिश्व शर्माया नायबिजिरे आन्जाद खुंनो गोनां जिल्लाफोरनि कमिश्नार गोजौ पुलिस बिबानगिरि आरो बिफानारि गाहाय बिथांमोनजों गिबि मन्त्रिया सुलाद लायो हादरसानि गं 17 जिल्लानि मोन 87 मिरुआव बे आन्जादखौ खुंगोन फिफा वर्ल्ड फुटबल काप बादायनायाव मैया के ग्रुपनि मोनसे गेलेनायाव कलम्बियाया उजबेकिस्ताननि हेंथायै 2-1 गलाव देरहायो फारसेथिं टरन्ट' स्टेडियामाव खुंनाय ग्रुप एलनि गुबुन मोनसे गेलेनायाव खानाया पानामाखौ 1-0 गलाव फेजेनो गुबुन मोनसे गेलेनायाव इंलेन्डआ क्रोएशियाखौ 4-2 गलनि फारागाव फेजेनो फारसेथिं पर्तुगाल आरो कंग'नि गेजेराव गेलेनाया ड्र' जानानै थायो आरो बेजों लोगोसे रादाबा एसेनोसै

खुलुमबाय बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी गिबियावनो गासिबो खोनासंगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय। आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडियाम वेबनि 411.5 मिटाराव आरो एफएम बेन्डनि 101.6 मेगाहार्जआव, आरोबाव आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्जआव आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्जआवबो रिले खालामनानै फोसावगासिनो दङ। लोगोसे निउज अन एआईआर मबाइल एप आरो एआईआर रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनासंनो मोनगासिनो दङ। दिनै स्टुडिय'आव दङ बानेश्वर बर' आरो मनजित बसुमतारिया। दान्दिसे समनि उनावनो नोंथांमोना उननि हाबाफारिफोरखौ खोनानो मोनलांसिगोन। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु, दानिया साख्रिनि रादाब। भारत संसार निगम लिमिटेडआव लांदां जानाय मोन 100 जुनियर टेलिकम अफिसार मासिनि थाखाय आर'जलाइ नागिरनाय जादों। दानबान्थाया दानफायाव 16,400 रांनिफ्राय 40,500 रांसिम, लोगोसे गुबुन गुबुन बानासबो थाफाबावगोन। बिनायसाया टेलिकमिउनिकेशन्स, इलेक्ट्रनिक्स, कम्पिउटार, इनफर्मेसन टेक्न'ल'जि, इन्सट्रुमेन्टेशन, रेडिय' इन्जिनियारिं आरो इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं, बेफोरनि जायखिजाया मोनसे दालायाव बिइ एबा बिटेक डिग्री थानाय जानो नांगोन, नङाबा इलेक्ट्रनिक्स एबा कम्पिउटार साइन्स आयदायाव एमएससि डिग्री थानाय जानो नांगोन। बिनायसानि बैसोआ 18 बैसोनिफ्राय 30 बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन। आबुं खारिथि आरो आर'जलाइनि थाखाय bsnl.co.in बे वेबसाइटखौ नायनो हायो। आर'जलाइ सुफुंनायनि जोबथा खालारा 4 जुलाइ। स्टाफ सिलेक्शन कमिशनआ भारत सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानाव लांदां जानाय मोन 12,256 ग्रुप बि आरो ग्रुप सि मासि सुफुंनो थाखाय कम्बाइन ग्रेजुएट लेभेल एग्जामिनेशन 2026 बे आन्जादखौ बान्जायनाय जादों।

0: जूनियर स्टेटिस्टिकल अफिसार मासिनि थाखाय बिनायसाया मेथामेटिक्स आयदायाव गोजौसिन गेजेरारि खोलोबाव खमैबो 60% नाम्बार मोन्नानै उथ्रिसारनाय जानायनि अनगायैबो ग्रेजुएट जानो नांगोन, नङाबा स्टेटिस्टिक्स आयदा लानानै ग्रेजुएट जानाय जानो नांगोन। स्टेटिस्टिकल इन्भेस्टिगेसन ग्रेड 2 मासिनि बेलायाव बिनायसाया स्टेटिस्टिक्स, मेथामेटिक्स, इकनमिक्स, डेमोग्राफि, पपुलेसन स्टाडिज, अपारेशन्स रिसार्च, इनफरमेशन टेक्नलजी, कम्पिउटार साइन्स, कम्पिउटार इन्जिनियारिं, कम्पिउटार टेक्नलजी, कम्पिउटार एप्लिकेशन्स, डाटा साइन्स एबा आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स आयदा लानानै ग्रेजुएट जानाय जानो नांगोन। गुबुनफोर मासिनि थाखाय बिनायसाया ग्रेजुएट जानो नांगोन। आबुं खारिथि आरो आर'जलाइनि थाखाय वेबसाइटआ जाबाय ssc.nic.in। आर'जलाइ सुफुंनायनि जोबथा खालारा 22 जुन। इन्डियान एयार फोर्सआ फ्लाइं ब्रान्स, ग्राउन्ड डिउटि टेक्निकेल ब्रान्स आरो ग्राउन्ड डिउटि नन टेक्निकेल ब्रान्सआव लांदां जानाय मासि सुफुंनो थाखाय AFCAT 2026 बे आन्जादखौ बान्जायदों। मासिनि नांगौ जानाय सोलोंथाय, रोंगौथि आरो बैसो बायदि आबुं खारिथि आरो आर'जलाइनि थाखाय वेबसाइटआ जाबाय indianairforce.nic.in। आर'जलाइ सुफुंना गथायनायनि जोबथा खालारा 19 जुन। साख्रिनि रादाबा एसेनोसै। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु। दानिया फोसावनो लादों आबादनि जोथोन आयदा। दिनै बे आयदायाव खोनासंहोनो लादों गिबि फोसावनाय थालिर आबादारि बिथां बाबुल बर'जों लानाय दान्दिसे मोगा मोगि। मोगा मोगिखौ लादों नगेन दैमारिया।
1: बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालाय। जों दिनै बर' आफादाव हांख्रायनानै लाबोनाय जादों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर हालामनि सासे राफोद थालिर आबादारि, बिथांनि मुङानो जादों बाबुल बर'। गिबियावनो जोङो बर' आफादनिफ्राय नोंथांनिसिम बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय।
2: नोंथांमोननिसिमबो खुलुमबाय थाबाय।
1: गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि सिनायथिखौ गावनि खुगाजोंनो एसे फोरमायगोन नामा, जाहाथे खोनासंगिरिफोरा नोंथांनि थंखौ मिथिनानै मोननो हायो।
2: आंनि मुङा बाबुल बर', गामिया जाबाय हालंबारि, थाना गरेश्वर आरो पस्ट अफिस जोंनि बागदबा, ओमफ्राय जिल्लाया जाबाय तामुलपुर।
1: गिबियावनो बे थालिर आबादखौ माब्लानिफ्राय मावनो लाजेनदोंमोन?
2: आं जुरिजेननाया 3 बोसोर जाबाय। बे आबादखौ गुबुनखौ मावनाय नुदों आङो। गुबुनखौ मावनाय नुनानै आंबो एसे सोंनानै लाबाय बेसेबां लाभालाभ जायो थालिर खेतियाव। बेफोरबायदिनो सोंनानै आंबो एसे जुरिजेनबाय थालिरनि आबादा बोरै जायो। दा बेफोरबायदिनो आङो नै 3 बोसोर जानोसै जाबायानो। जोङो गोख्रोङैनो जों थालिर आबादाव गोसो होनानै मावबा गोबां लाभालाभ जायो।
1: बेखौ साननानै नोंथाङा मिथिनानै मावनाय जादों?
2: औ।
1: गिबियावनो नोंथाङा बुंदो बे थालिर आबादखौ मावनांगोब्ला गिबिनिफ्राय माबायदि बोरै बोरै जोथोन लानांगौ बेनि सायाव एसे बुंगोन नामा?
2: गिबि गायनायनिफ्राय जोंनिया जोथोन लानांगौ। जोङो गायनाय जोङो पइन्टखौ जेथिया बनायना लागोन, पइन्टखौ बनायना लानाय लेखा जोङो बेयाव जों मा मा होग्रोनानै दोननांगोन, जावनानै बोरै पइन्टखौ बनायना लाग्रोनांगोन। जोङो बेयाव एसे मेडिसिन बाहायग्रोना लानांगोन जावनायनि पइन्टआव। सानथाम दोननांगोन बेखौ। दा सानथाम दोननांगौबा बे पइन्टआव जोङो मेडिसिन एसे बाहायनो गोनां जायो। जायोबा जों बेयाव जाहाथे बिनि एम्फौफोरा जाहाथे बिखो आक्रमण खालामनो हाया, दा बेयाव जों एसे खुरादन बाहायना लाग्रोनो गोनां जायो।
1: बे मुलिया खुरादन?
2: खुरादन बे फुलिखौ रैखा होयो। दा बे फुलिखौ गाय 3 दिन दोननानै जोङो जुदि गायोब्ला, गायनानै जोङो बोरै बिनि बोरै गायनांगौ, 3 दिन दोननानै जों पइन्टखौ एसे एसे जों जाहाथे बिनि माबाखौ 1 फुट गोथौआव हगार हरनानै ग्रोबै मोजाङै गायबाय। गायनानै जोङो बेयाव सप्ताह मोनसे जानाय लोगो लोगो मोनसे जोङो जिथु बेबिस्टिन जोङो मेडिसिनखौ जोङो गायखांनानै बेखौ स्प्रे खालामनानै दोनखाबाय।
1: गायनायनिफ्राय
2: जोंना 7 माहया पुरा नांखागौ ओंखारनायालागै। 7 माहावसो बियो ओंखारहैगोन गायनायाव। दा ओंखारां जायोबा जोंनिया मोनसे प्रब्लेम फैलायबाय मेडिसिननि। दा बेयाव जोङो बे ओंखारां जानाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे फिसा फिसा एम्फौ मोनसे आक्रमण खालामो बे थालिर दंफांखौ।
1: मा एम्फौ बेफोर?
2: दा मेवा सिस्टेमनि बे एम्फौआ गोसोम गोसोम एसे बिराद बिरो आरो। बियो बिरनानै बिराद आक्रमण खालामो। बियो जिथियानो मोना जागोन हाबजुमा थागोन। बिखौ ओंखारनो थाखाय जोङो नायतबा साय पार्सि नायतबा मा बुङो मुलियाथ' गोबां मुलि दङ। दा जोङो जेहेतु कानुन होननाय बुङो, कानुनखौ होयोबा बांसिन साबद्रायसिन जायो आरो। टाइपारशिप आरो कानुन बे मोननै मुलि होयोबा बांसिन साबसिन। जेबो थालिर दंफाङा
1: खहा जाया
2: आरो बिनि बिथाइफोरा

0: जोबोद साफायनो जागोन आरो
1: बे एम्फौ जानाय दागोथाया बिदि
0: दागोथाया
1: बे थालिरखौ गायोब्ला नोंथांमोना बेसेबां बेसेबां गोजानाव गायो डिफारेन्स
0: दा डिफारेन्सनि बेलायाव जोङो 10 फुट आरो 8 फुट फांसे थालिर दंफांखौ 10 फुट आरो 8 फुटआव गायनो गोनां जायो
1: बिगासेयाव बेसेबांसो थालिर बिफां गायो जायो
0: जों दा जों 1 बिघा हायाव जोङो 180 थालिर बिफां नांगौ जायो जोंनो
1: नोंथाङा दा गासै बेसेबां बिघा हायाव थालिर आबादखौ मावनाय जादों
0: आं दा थालिर आबाद आंनिया 11 बिघा आं दा 11 बिघा थालिर आबादाव नांनानै दङ
1: दिनै 3 बोसोर जाबाय
0: नै दिनै 3 बोसोर सफैबाय
1: दा नोंथां बे 7 दानाव जेहेतु बिबार लानायनि सम जायो थालिरा बेखौनो बारनायनि सम जायो बे थायनायसिम बेसेबांसो सम नांगौ जायो
0: दा
1: खाजासिम
0: खानायसिम जोंनिया 10 माह नांगौ जायो
1: बेखौथ'
0: आरो बिनानैथ' मोनथ'वा बेखौथ' गुबुनजों बायखानानै लाबोनो गोनां जायो
1: गुबुननि थालिर
0: बागाननिफ्राय जोङो बायखानानै लाबोनो गोनां जायो
1: बेसेबांसो बेसेनाव लाबोनाय जायो
0: ओरैनो जोङो दा बायनाया फांसे दंफाङाव थालिर फुलि दंफाङाव जोङो 10 रांखै बायो जों बागाननिफ्राय जोंनिया जायगायाव गारफैनाय लागै 30 रां गोलैदों
1: जोबोद मोजां नोंथांनिफ्राय बेखिनि बाथ्राखौ जों मिथिना मोननो हाबाय खोनासंगुरिफ्राय मिथिना मोननो हाबाय दा एसेयावनो नोंथांखौ सोंनो लुबैदों बे फिथाइ थायनाय समावहाय आरो फिथाइनि थाखाय आरो गुबुन माबाफोर राहा लानांगौ थायो नामा जेरैबायदि एम्फौ एनला
0: दा बेफोरनि बादि गोबां दङ दा गायनायनिफ्राय जोङो 1 माह जानाय लोगो लोगो खेबसेखौ बेयाव जोङो जेहेतु कानुन कानुन मुलिखौ जोङो बेयाव थालि दंफां स्प्रे खालामनो गोनां जायो 1 माहनि मुरि बेयाव जाहाथे जेबो एम्फौआ जाहाथे बेखौ आक्रमण खालामनो हाया
1: मा मुलि होनदोंमोन बेखौ
0: कानुन
1: बेनिफ्राय बे थालिरखौ फाननायाव 10 मास नांगौ जायो दानिया जोङो मोनसे मार्केटआव फैनोसै हाथाइनि बेलायाव दा नोंथांमोना बे थालिरखौ 10 दानाव एबा बोसोरसेनि उनाव माबायदि फानो बहाबा फानो माबायदि बेसेनाव फानो
0: दा थालिनि बेलायाव जोङो दा थालिखौ दानबाय जोङो मार्केट सिस्टेमाव जोङो तारमाने पाइकारि सिस्टेम होयो बेखौ जोङो जों खुस्रा फाना जोङो बेखौ थक सिस्टेम फाननाय थाङा जोङो जायगायावनो जोङो साप्लाय होयो डेलिभारि होयो फालांगिरिफोरा जायगायावनो थाङो जोंनि आबादारिफोरा सम मोना नालाय बाजार उथिंनो जों आबादारिफोरा मानो कारण सम मोना जों बे आबाद मावनायाव जों थालिर दाननो ना बोथिङा लाबोनो ना नों बाजार बुनो बेयाव जोङो जायगायावनो बेपारि थाङो बे बेपारिफोरनो जों जायगायाव आखि सिस्टेमाव जों हरनाय थाङो जों बिथांमर फाननाय थाङा इखो जोङो जों जाबो होनना बुङो जों बर' जोङो जाबसे बेफोरबायदि जोङो बेपारिनो बेबायदिनो आखि सिस्टेमैनो जों 40 निफ्राय 40 बा 50 बेफोरबायदि हरो जों
1: जाबसेयाव
0: बिदांसियाव बेसेबां थायो माने 9 निफ्राय 10 आखिसिम थायो बेनि मुलाम्फाया नों 40 बा हमोबाबो बेसेबां जायो बेखिनियानो आरो दा
1: हिसाब हमोब्ला बिदांसि थालिदाव 10 जाब एबा 80 बाजौ जाहैबाय गासैबोथ' जेनेबा बिदांसियाव 8 9 10 जाब बेबायदिथ'
0: बिनि बेलायाव दा जोंनिया थालि आबादा मोजां जुदि जोथोन लायोबा 9 10 बे जानाया
1: सैथोखा
0: आरो कमबाबो जोंनिया 400 रांनि जोंनिया फैखाथारो बिदांसे थालिराव जोंनिया 400 रांआ फैखाथारो दा बिनि गाहायाव फैया
1: बिदिब्ला बिगासे हायाव 180 दंफां बे दंफाङाव 400 रांनि हमोब्ला हमोब्लाबो 150,000-160,000 फैयो
0: बेसे फैयो
1: जोङो 150,000 हमबाय नोंथांनाव बेसेबां थालि दङ होनदों दासान्दि
0: दा हाया दङ आंनियाव 10 बिघा
1: 10 बिघा न
0: आं 10 बिघा
1: 10 बिघाब्ला हमैनो 10 लाख आरो 5 लाख 50,000 जेनेबा 15 लाख बोसोराव आरामसे फैयो बा बेयो जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथां जोंनि खोनासंगुरिफोराबो नोंथांनि बे थुलुंगानाय बाथ्राखौ खोनानो मोननानै थारैनो जोबोद थुलुंगानाय मोनगोन आरो गोसो दुंखांगोन बे आबादखौ मावनो थाखाय दा नोंथांनाव आङो सोंनाय जायाखै जेनेबा नोंथाङा बे गायनाय थालिफोरनि गेजेराव बे थालिनि जाथोफोरा मा मा
0: दा थालिरनि जातनि बेलायाव आं बहुत बेफोरबायदि थालि जात दङ मावबा जेरैबायदि जोङो मालभग जेतु दिगदय अमृतसागर जों बेफोरखौ मावनो हायो मावोबा मावनो हायो जाहाथे बिनि लाबा लाबा मार्केटआव एसे कम जायो आरो दा आं जातनि बेलायाव मालभग जोंनि बेखौनो मावदों आरो आं दा मार्केटआव सबसे बांसिन साहिदाया बि जाना दङ आरो
1: आथिखालाव दा नोंथाङा बे आबादखौ मावनानैहाय बोसोराव 10 बिघायाव 15 लाख रां खामायनायनि खोथाखौ बुंबाय दा बेनि गेजेराव नोंथाङा एसे सरासनस्रा जेनेबा थुलमुल भाबैब्लाबो बोसोरसेयाव बे आबादखौ

0: anang tako no korni sir pasal bayi ada no koro sir dongo benisa mende isi bung guna ma
1: no angnya to padara re madara mua hala angnya da goto gora satam dongo angni meses da meses as gobang kosto zanang nang zayi
0: mane nung tang zong hepasal kolang bayi
1: ang dong engkam hinai de hinai bohot hepasal bayi ara hamani yo बहुत गोबां खस्थ' जानांगौ लां जायो गथ'फोरा साथाम दङ सासेयानो डिग्रि मोनबाय दा सासेया क्लास 9 मोनबाय सासेया 5 मोनबाय दा हिन्जावफोरा सानै हौवा सासे
0: नोंथांखौ आं जोबथायाव मोनसे बोसोनथि होनाय बायदिहाय नोंथांखौ एसे सोंनोसै जेनेबा आथिखालाव जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां लेखाफोरा फरायनानैबो साख्रि नागिरनानैबो साख्रि मोननो थाङा दा बिथांमोन बायदि लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा बोसोन होनो सानो
1: दा बेनि बेलायाव सोरबा थ' गुबुन गुबुन खस्थ' जानानै साख्रि नागिरदों दा साख्रि नागिरनानै मोनाखै आं गोबां गथ'फोरखौ मोजां मोजां गथ'फोरखौ मोजां जाजानो लुगैनानै आं जेरैबायदि खस्थ' जायो जेरैबायदि खस्थ' जानानै आङो आबाद मावदों हाफोरखौ सोरनिबा थिखा लानानै

0: लाव सोरबाथ' गुबुन गुबुन खस्थ' जानानै साख्रि नागिरदों, दा साख्रि नागिरनानै मोनाखै। आं गोबां गथ'फोरखौ मोजां मोजां गथ'फोरखौ मोजां जाजानो लुगैनानै आं जेरैबायदि खस्थ' जायो, जेरैबायदि खस्थ' जानानै आङो आबाद मावदो, हाफोरखौ सोरनिबा थिखाला लानानै बेफोर आबादाव नांथाबनानै इसे खस्थ' जानानै गावनि माबाखौ सलायलांनो थाखाय आङो गोबां बोसोन होयो। आं बेनि बेलायाव बहुत मोजां मोजां बाथ्रा बुङो बिसोरखौ आबादनि थाखाय। आजिखालि बिगियाननि पद्धति मावनो थाङोब्ला नों इसे हायावनो गोबां रां खामायनायनि माने राहाया दङ। बे बेलायाव आङो गोबां बेफोरबायदि गथ'फोरा रावबो नार्भास जानाङा, रावबो नार्भास जानाङा, जाहाथे जोंनि आबादारिफोरजों इसे सुलुद लानानै मावनायनि लाहार फाहारखौ ला, होमबानो गावनि साननाया थाबनो जाफुंसारगोन आरो। दा ओरैनो बेकार सोरबा सासे सानैया बेकार जौजों माजों गबना थादो, साख्रिखौबो नागिरनांगौ, साख्रिखौबो नागिरा नङा नागिरनांगौ। दा साख्रिनि बेलायाव नांथाबबाय थायोबाबो नोंथांनि माबाया सोब जाफुंसाराबो जानांगौ हागौ। दा बेखायनो आबादावबो इसे गोसो हो। आजिखालि बिगियान जुग जाबोदो, बिगियाननि पद्धति दा मा मा मावोबा इसे हायावनो 2 बिघा 3 बिघा हायावनो बिसिबां रां खामायनायनि माने सुलुद दङ, राहा दङ। जुदि 2-3 बिघा जुदि हा बायोबा, नोङो बानलुखौनो गायबाय जोङो बिघासे, जोङो जिंखा बायदिसिना दैज्लांनि खेतियाव जिंखाखौनो गायबाय बिघासे, आरो गायबाय जोङो गुबुन खेति बा आबाद बिघासे। 3 बिघायाव नोङो बिनि 3 बिघाखौ मावनो थाङोब्ला गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बिगियाननि पद्धतिबा। दा बेनिखायनो इमान नार्भास जानाङा, साख्रियावबो गुरुत्व हो, नोंथांनि न'खरा आरामसे सोलिलांनो हागोन। बे मैगंनि आबादल' नङा, बिनिल' आबाद नङा, दा आजिखालि दा गोबां माने आबाद दङ, जेने मोसौ दाउ बोरमा अमा बेफोरनि बेलायावबो नांथाबनो हायोब्ला, इसे खस्थ' खालामनो हायोब्ला जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। आबादारिनि गेजेराव बहुतखिनि सोलोंनांगौ दङ, सोरबा सासे रोंखा राखा, सोरो माबोरै माबोरै मावनांगौ, माबोरै आबादखौ बोरै सलायलांनांगौ, माबोरै आबादाव माबायदि माबा खालामनांगौ, बेबहार मा ट्रेनिं, बेफोरबायदि ट्रेनिंखौ लाग्रोनांगोन। लाग्रोनो हाबासो नोंनि साननायफोरा साक्सेसफुल जागोन। आरो खस्थ'आथ' जेबो नङा, खस्थ'खौ खस्थ' भाबिनाङा। आजिखालि साख्रि नागिरनो थांबाबो गोबां खस्थ' दङ, फरायनायावबो जोबोद गोसो होनानै खस्थ'यै नोङो नाजाबासो, नों खस्थ' खालामबासो नों फिथाइया थायगोन।
1: जायखिजाया खामानियावनो खस्थ'आ
0: दङ,
1: आरो बे खस्थ'खौ सहायनो हाबासो
0: मोननो हायो।
1: दा नोंथाङा जोबोद मोजां बोसोनखौनो होबाय जोंनि फैबाय थानाय इयुनाथाल लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय। दा जायखिजाया नोंथां, जोंहा स्टुडिअ समाबो जानानै फैबाय। जोबनायाव आङो फिन खेबसेबाव आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि बराफोरनि जानानै नोंथांनिसिम खेबसेबाव फिन रोजा रोजा सिबिनार खुलिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि बे मोगा मोगि आयदाखौ फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों,
0: खुलुमबाय।
2: एसे सम नोंथांमोना दिनैनि आबादनि जोथोन आयदायाव गिबियै फोसावनाय थालिर आबादारि बिथां बाबुल बर'जों लानाय दान्दिसे मोगा मोगिखौ खोनासंनो मोनबाय। मोगा मोगिखौ लादोंमोन नगेन दैमारिया। बेजों लोगोसे दिनैनि आबादनि जोथोन आयदायाबो एसेनोसै। नोंथांमोना फोसावनायखौ खोनासंनो मोनगासिनो दङ आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडियाम वेभनि 411.5 मिटाराव आरो 101.6 मेगाहार्जआव, आरोबाव आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्जआव आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्जआवबो रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनासंनो मोनगासिनो दङ। लोगोसे निउज अन AIR मबाइल एप आरो AIR रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो बर' आफाद फोसावनायखौ खोनासंनो मोनगासिनो दङ। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु। दानिया फोसावनो लादों रैसुमै खबाम मेथाइनि आयदा। दिनै बे आयदानि गिबियावनो खोनासंहोनो लादों मीना दैमारिनि गाराङाव महत बसुमतारिया सुजुनाय नैबे दोंसे गोदान मेथाइखौ।

रैसुमै खबाम मेथाइनि आयदायावनो दानिया खोनासंबावदोनि चित्रा कसारिनि गाराङाव अरुप गोरा बसुमतारिया सुजुनाय नैबे दोंसेबाव गोदान मेथाइखौ।

नोंथांमोना रैसुमै खबाम मेथाइनि आयदा खोनासंनो मोनगासिनो दङ। आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालाइनि मिडियाम वेबनि 411.5 मिटाराव आरो एफएम बेन्डनि 101.6 मेगाहार्जआव, आरोबाव आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्जआव आरो आकाशवाणी धुबुरी सेन्टारनि 103.3 मेगाहार्जआवबो रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ। लोगोसे निउज अन एआईआर मबाइल एप आरो एआईआर रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो खोनासंनो मोनगासिनो दङ। रैसुमै खबाम मेथाइनि आयदायावनो दानिया खोनासंहोबावदिनि हेमचन्द्र खाख्लारिनि गाराङाव धीरेश्वर बर' नार्जिया सुजुनाय नैबे दोंसे गोदान मेथाइखौ।

रैसुमैखौबा मेथाइनि आयदानि जोबथारनायाव दानिया खोनासंबावदोनि फैलाव बसुमतारीनि गाराङाव चक्रधर बर'आ सुजुनाय नैबे दोंसेबाव गोदान मेथाइखौ।

एसे सम रैसुमै खबाम आयदानि माखासे गोदान मेथाइ फोसावनायखौ खोनानो मोनबाय बेजों लोगोसे सम जानानै फैनाय लोगो लोगो दुलाराय खोनासंग्राफोरनिसिम अननाय मोजां मोना आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै बर' आफादखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों

महापुरुष शंकरदेव विरचित बरगीतों का हिंदी में अनुवाद करके भारतवासियों को असमिया साहित्य से परिचित कराने का एक महान कार्य संपादन किया। इसके बाद उन्हीं को अनुसरण करके विचित्र नारायण दत्त बरुआ ने असमिया के एक अन्य प्रमुख कवि राम सरस्वती विरचित भीमचरित ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया। असमिया साहित्य के हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में लोकनाथ भराली का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने असम के उपन्यास सम्राट रजनीकांत बरदले जी विरचित ऐतिहासिक उपन्यास मनोमति, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विशिष्ट उपन्यासकार वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी रचित उपन्यास आई, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता विशिष्ट उपन्यासकार सैयद अब्दुल मालिक का उपन्यास सूरजमुखी स्वप्न का अनुवाद सूरजमुखी का सपना तथा नवकांत बरुआ के उपन्यास कपिली पोरिया हधु का अनुवाद कपिली के आर पार शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया। शंकरलाल शर्मा ने माधुरी नाम से पदुम कुंवरी गुहाएं की कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। यह कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही असमिया कहानियों का प्रथम हिंदी अनुवाद है। असम के एक प्रमुख साहित्यकार तोरुण आजाद डेकाजी ने अनेक असमिया ग्रंथों का विशेष रूप से असमिया नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। इनके द्वारा हिंदी में अनुवादित नाटकों में रसराज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कृत जयमती खोपड़ी, साहित्याचार्य अतुल चंद्र हजरिका कृत सेनापति तिकेंद्रजीत सिंह, अनूप वर्मा कृत त्रिशंकु, ज्योति प्रसाद अग्रवाला कृत महल की चोरी, छह अंधों का हाथी दर्शन, महेंद्र वरा कृत जन्म, भवेंद्रनाथ शैकिया कृत गहवर और रावण, हुमैन बरगोहाई कृत जंजीर और प्रतिपदा, फणी शर्मा कृत भोगजरा, तिलक हजारिका कृत इलाज, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का बंध, अरुण शर्मा का शोर, नीरेन बरुआ कृत कस्तूरी, फणी तालुकदार रचित आतताई, दुर्गेश्वर बरठाकुर तथा महेंद्र बरठाकुर रचित न कहना ही अच्छा है आदि उल्लेखनीय है। हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में नवानंद वर्मा जी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अनेक असमिया रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। उनमें महापुरुष शंकरदेव की सर्वश्रेष्ठ कृति कीर्तन घोषा का अनुवाद, माधव कंदली की महत्वपूर्ण कृति रामायण का अनुवाद, बादल छंट गए शीर्षक से योगेश दास का उपन्यास दावोर अरुणाय का अनुवाद, बंधन शीर्षक से नवकांत बरुआ विरचित तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास कोका देवतार हार का अनुवाद, अंधेरा उजाला शीर्षक से वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का उपन्यास मुनि सुनी पोहर का अनुवाद, रंगमिली की मुस्कान नाम से प्रख्यात उपन्यासकार रंगबम केरांग के उपन्यास रंगमिली रही का अनुवाद, कन्या की कीमत नाम से लुमेर दाय का कोइनार मूल्य उपन्यास का अनुवाद, कथा भारती असमिया कहानियां शीर्षक से डॉ. निर्मल प्रभा वरदले संपादित असमिया अहोमिया सूटी गोल्प संकलन का अनुवाद, आकाश शीर्षक से डॉ. भवेंद्रनाथ शैकिया के कहानी संकलन का अनुवाद, महिम बरा विरचित काठनीबारी घाट शीर्षक कहानी संकलन का हिंदी अनुवाद, डाक के वचन शीर्षक से डाकोर बसन का हिंदी अनुवाद, महात्मा से रूप कुंवर तक शीर्षक से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मीनाथ फुकन विरचित महात्मार पड़ा रूप कुंवर लोई शीर्षक ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, नगेन शैकिया संपादित लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के रचनाओं का संकलन का हिंदी अनुवाद, बेजबरुआ की संकलित रचनाएं, प्रफुल्ल दत्त गोस्वामी जी संपादित आठ असमिया एकांकी और पियोली फुकन का हिंदी अनुवाद आदि प्रमुख कृति है। सुमति तालुकदार ने नीलमणि फुकन का ग्रंथ साहित्य कला का अनुवाद किया। नरनाथ भट्टाचार्य ने डॉ. वाणीकंद काकटी की पुस्तक पुरोनी अहोमिया हाइत का अनुवाद प्राचीन असमिया तथा अंकिया भावना का अनुवाद एकांकी शीर्षक से किया। उन्होंने डॉ. काकती की पुस्तक कुमारहरण और शंकरदेव की आध्यात्मिक देन का भी अनुवाद किया। असम का और एक प्रख्यात अनुवादक चित्र महंत ने डॉ. बानिकंद काकती रचित साहित्य और प्रेम, रजनीकांत बरदले रचित निर्मल भक्त, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का उपन्यास यारविंगम का अनुवाद किया। डॉ. अजीत कुमार दास ने रसराज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की कृति बूढ़ी आयर हधु का अनुवाद दादी की कहानियां शीर्षक से किया। डॉ. शांति थापा और श्रीमती मालविका शर्मा ने श्री महादेव गोस्वामी जी कृति भारत के स्वाधीनता आंदोलन में पानबारी का रेलगाड़ी दुर्घटना कांड का हिंदी में अनुवाद किया।

0: असम की संस्कृति, वैष्णव परंपरा और मानवीय मूल्य की ओजस्वी भाषा में प्रकट करने वाला अतुलानंद गोस्वामी का बहुचर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास नामघरिया का सत्यदेव प्रसाद ने हिंदी में अनुवाद किया। श्री सुरेंद्रनाथ साहू ने हेमबरुआ की कृति लौहित्य और नीलाचल तथा माधवदेव की कृति नामघोषा का हिंदी में अनुवाद किया। लक्ष्मी शंकर गुप्त ने महापुरुष शंकरदेव के ब्रजावली ग्रंथावली का संपादन करके उसका प्रकाशन करवाया। प्रोफेसर कृष्ण नारायण प्रसाद मागध जी ने वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास मृत्युंजय का हिंदी में अनुवाद किया। आदमी और जंगल सत्यदेव प्रसाद द्वारा अनुदित उमाकांत शर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें असम के चाय बागान के श्रमिक समुदाय की जीवन प्रक्रिया के क्रमिक परिवर्तन और असमिया समाज के सांस्कृतिक समन्वय को चित्रित किया गया है। सौरभ चरिहा की चुनिंदा कहानियां दिनकर कुमार द्वारा अनुदित असमिया के उत्कृष्ट कथाकार और नए भावबोधों के प्रणेता सौरभ चरिहा के कुछ कहानियों का अनुवाद है। दिनकर कुमार ने पिता पुत्र शीर्षक उपन्यास का भी अनुवाद किया, जिनमें दो पीढ़ियों का वैचारिक संघर्ष, असम जनपद के सामाजिक वैमनस्य, राजनीतिक षड्यंत्र आदि को प्रभामान शैली में सूक्ष्मता से चित्रित किया गया। शारदा बोरुआ द्वारा गंगा चील के पंख शीर्षक से अनुदित लक्ष्मीनंदन बोरा का बहुचर्चित उपन्यास गंगा सिलुनीर पखी हिंदी के पाठकों के समक्ष असमिया ग्राम्य जीवन का झलक प्रस्तुत करने के लिए एक उत्कृष्ट कृति है। शीलभद्र विरचित उपन्यास सांझ के बेला में और रासना बोरुआ का उपन्यास हरी पत्तियों की गाथा का अनुवादक है महेंद्र नाथ दुबे जी। इन अनुवादकों तथा उनकी अनुदित कृतियों के अलावा और अनेक अनुवादक हैं जिन लोगों ने निरंतर साधना तथा अथक प्रयत्न से असमिया के साहित्य भंडार के अमूल्य निधियों को हिंदी में अनुवाद करके राष्ट्र के समक्ष उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।
1: अभी आपने सुना गोलोक चंद्र डेका से उनकी वार्ता, असमिया साहित्य के हिंदी अनुवाद। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
2: শ্রোতাসকলে আমাৰ অনুষ্ঠান শুনি আছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু শাখাৰ পৰা। এতিয়া শুনক চিত্ৰা সিঙৰ কণ্ঠৰ এটি ভজন।

0: মূল্যটো গাখীৰতে মহৰ খুটি
1: মানে
0: তোৰ কাৰণে সকলো বিনামূলীয়া আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে 50% ৰেহাই
1: তেতিয়া হলে ফুটনি মৰাটো তোৰ এক্তিয়াৰ
2: হোমিওপেথিক আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ভেটাপাৰা গুৱাহাটী
3: আকাশবাণী গুৱাহাটী সংস্কৃত কথিকা অনুষ্ঠানত এয়া ডক্টৰ বিনিমা বুজৰবৰুৱাৰ কথিকা অসম প্ৰদেশস্য প্ৰমুখ বৈষ্ণৱাচাৰ্য
4: অসম প্ৰদেশে বৈষ্ণৱ মতাদৰ্শস্য প্ৰসাৰণে প্ৰচাৰণে চ আচাৰ্যাণাম অথবা ধৰ্মগুৰুণাম অৱদানম উল্লেখনীয়ম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱঃ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱঃ তথা তয়োঃ কেচন অনুগামিনঃ অস্মিন ক্ষেত্রে মহতিং ভূমিকাং গৃহীতবন্তঃ বিষ্ণুভক্তানাং কৃতে আচার্যস্য যত প্রয়োজনম তত্তু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবেন তদীয়ে ভক্তিরত্নাকর নামকে গ্রন্থে নিভালিতমস্তি যথা তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম ইতি यद्यपि प्राक्शंकरी युगेपि विष्णुभक्तेः प्राधान्यमासीत् तथापि असमप्रदेशस्य सर्वासु दिक्षु वैष्णवमतप्रचारणेन येन एकम् अनवद्यं जागरणम् आनीतं स एव सर्वजनपूज्यः सर्वगुणाकरः महापुरुषः श्रीमन्त शंकरदेवः तेन प्रवर्तितः नववैष्णवधर्मः एकशरणहरिनामधर्म इति नाम्ना अभिधीयते तस्मिन् समये अनक्य अनाचार अज्ञानता आदिभिः अच्छन्नः आसीत् असमप्रदेशः प्रचलितधर्माः अपि आसन् विभ्रान्तिजनकाः एकशरणहरिनामधर्मस्य माध्यमेन साधारणजनान् सन्मार्गप्रदर्शनं तथा तदानीन्तनसमाजस्य संस्कारसाधनमेव आसीत् शङ्करदेवस्य वैष्णवान्दोलनस्य प्रधानलक्ष्यम् स च गुरुवर्यः कीर्तनादिकाव्यग्रन्थानां रुक्मिणीहरणादिनाटकानां वर्गीतभटिमादीनां च विरचनेन जनान् भक्तिधर्मं प्रति आकर्षितवान् एतस्मिन् पवित्रप्रयासे स सफलतामपि लब्धवान् शङ्करदेवस्य अनुगामिषु प्रधानः प्रियतमश्च आसीत् श्री श्री माधवदेवः बहूनां काव्यगीतनाटकादीनां विरचनेन वैष्णवमतं लोकप्रियं कर्तुम् अनेन महापुरुषेण महती प्रचेष्टा कृता आसीत् तस्य नामघोषा इति ग्रन्थः न केवलम् असमीया वैष्णवसमाजे एव समादृतः अपि तु पृथिव्याः उत्तमग्रन्थेषु अन्यतमरूपेण स्वीकृतः वर्तते श्री श्री दामोदरदेवः आसीत् वैष्णवधर्मस्य अन्यतमः प्रधानाचार्यः पाटवाउसी इति स्थाने निवसनकाले सः शङ्करदेवस्य भक्ति आन्दोलनं प्रति आकर्षितोऽभवत् शङ्करदेवः तस्य द्वितीयतीर्थभ्रमणकाले सत्रियकार्याणां परिचालनार्थं तथा ब्राह्मणेभ्यः शरणं प्रदातुं दामोदरदेवं नियोजितवान् परवर्तिनिसमये दामोदरदेवः स्वप्रचेष्टया एकं सत्रं स्थापितवान् कोचविहारेऽपि तेन राज्ञः लक्ष्मीनारायणस्य पृष्ठपोषकतायां वैकुण्ठपुरनाम्ना सत्रमेकं प्रतिस्थापितम् अस्मिन् वैकुण्ठपुरसत्रे एव ख्रिष्टीय 98-15 वर्षे तस्य महाप्रयाणमभवत् वैष्णवमतस्य अपरः धर्माचार्यः आसीत् श्री श्री हरिदेवः सः मानेरी इति स्थाने सत्रं प्रतिस्थापितवान् अभ्यन्तरीणविशुद्धतया सह बाह्यिकविशुद्धताविषयेऽपि तेन गुरुत्वम् आरोपितम् अस्मिन् क्षेत्रे सः स्वयमेव आदर्शस्वरूपः आसीत् कामरूपस्य मानेरी लक्ष्मीपुरजि

0: অসমীয়া শ্ৰব্যসফুৰাৰ গীতৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই লভলীন নিগম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी

0: इसे तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सिंकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर न्यूज ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: उप भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत

0: मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे।

0: के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: বেমাৰ ভাল হোৱাৰ পৰা বৰ ফুটনি দেখোন তোৰ
2: কথাটো কি
3: নহব কিয় হোমিঅৰ চিকিৎসাই মোক নতুন জীৱন দিলে যে
1: তাৰ মানে
3: মানেটো হ'ল হোমিঅপেথিক আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান
1: তাত কি হয়
3: হেৰ নহয় কি যক্ষ্মা ৰোগ ধৰা পেলোৱা মাতৃ শিশু তথা সাধাৰণ বহিৰ্বিভাগ সুলভ চৰকাৰী হাৰত ঔষধ প্ৰদান আৰু পৰীক্ষাৰ লগতে বিনামূলীয়া পৰামৰ্শ আৰু তোৰ যদি বিপিএল কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লেতো গাখীৰতে মহৰ খুটি
1: মানে
3: তোৰ কাৰণে সকলো বিনামূলীয়া আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে 50% ৰেহাই
1: তেতিয়াহ'লে
4: হোমিওপেথিক আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ভেটাপাৰা গুৱাহাটী
5: আকাশত মেঘে গাজে চহৰত লাগে ভয় বাৰিষাৰ বানত বাটপথ নদী যেন হয়
6: ঘৰত পানী সোমালে চুইচ কৰিব বন্ধ বিদ্যুতৰ কামত কেতিয়াও নকৰিব দণ্ড
5: নলাত যাবৰ প্লাষ্টিক নেপেলাব ভাই ভাবি চিন্তি ফুটপাথত খোজ দিব মেন হল চাই
6: হঠাৎ বাঢ়িলে পানী ওখ ঠাই লৈ যাব বেছি পানীত গাড়ী চলে বিপদ মাতি নলব
5: মাত্ৰ 6 ইঞ্চি পানীটো মানুহ উটি যায় বাঢ়নী পানী দেখিলে ঘূৰি অহাটোৱে উপায়
6: বিজুলী খুটাৰ পৰা দূৰতে থাকিব হাতত এডাল লাঠি লৈহে পানীত নামিব
5: নিজে সজাগ হৈ থাকিলেহে বাচিব আমাৰ প্ৰাণ নগৰীয়া বানৰ পৰা হওক সদায় সাৱধান
7: অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ চমুকৈ ASDMA দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত
8: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু নিবেদন কৰিবলৈ লৈছো অসমীয়া ছবিৰ গীতৰ অনুষ্ঠান চিত্ৰগীত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছো জিতুল সোণোৱাল আৰু তৰালী শৰ্মাৰ কণ্ঠৰ এটি গীতেৰে ছবিৰ নাম হেপাহ

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: খন্তেক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ অসমীয়া ছবিৰ গীতৰ অনুষ্ঠান চিত্ৰগীতৰ মাজলৈ। এখন হাস্যমধুৰ জনপ্ৰিয় অসমীয়া ছবি জোণ্ডা ইমান গুণ্ডা, ছবিখনৰ পৰা শুনোৱা হওক এই গীতটি, গাঁৱৰে সৰু সৰু পদূলি, সুবাসত আমূল মূল শেৱালী।

घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।